हरे सेई तुद नौ गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुद नौ गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा साचो साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखा कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पात साहो साहा पत साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड़ा आखै सब कुए के वड़ वड़ा डीठा हुए कीमत पाए ना कहे आ जाए कहने वाले तेरे रहे समाए

असो हर हर नाम मिले तृप्तासै मिल संगत गुण परगासो जिन हर हर हर रासो नाम ना पाया ते भागहीन जम पासो जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखासु।

रिजिक संभाहे ठाकुर काहे मन भाओ करया। उडे उड आवै सै कोसा तिस पाछै बचरे शरया।

क्या गुण आख वखाणा। जो सेवा है तुद जी, जन नानक तिन कुर्बाणा। हर त्यावै तुद जी, से जन जुग मैं सुखवासी। से मुकत पाए, जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिनका पौ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंपा। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता।

सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। आशा महला चौथा, तू करता सचियार मेंढा साई। जो तौ पावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हो पाई। रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनु कृपा करै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रत पारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावो, आप हाथ दय मोहे बचावो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिय, सब पैरन को।

कोई अवर ना त्याऊ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है।

है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा।

संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्भकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत पेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती।

असिख संगरो दोष्ट जीते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण खाता जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दोष्ट दुखत हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे।

तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मानेओ। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु पे

पौड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कोहे नाहे, ओथै तेरी राखो अग्नि उदर माहे। सुनकै जम के दूत नाए तेरै छड जाहे, पहु जल बिखम असगाहौ गुर शब्दी पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब

श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डठै सब दुख जाए। एक बहादुर सिमरे है घर नौ नेद आवै ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद

पतत पावन दया सिंध कृपा निध राजान राज पानहान पहाण दीवान देव उपमा महान के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमीसुल सलाम है समास्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनुल चिराग है।

की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध्या वै धाए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। हे निमाणियां दे माणनी ताणियां दे ताण सचे पिता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जी ने मेहरा कीतियां ने दाता जी अमृत वेले तो लै करके इस वेले तक आप जी ने संगतां नूं अपने सिंघासन ते प्रकाशमान हो करके दर्शन दीदारे बख्शिश कीते। गरीब नवाज जीओ आप जी का कोटि कोटान शुकराना है धन्नवाद है जी। इस वेले दीवाना की समाप्ति हुई है। आप जी दे सुख आसन की सेवा सोहिला साहब जी दे पाठ किए ने। आप जी दे दर घर दे टहलियां पासों सेवावां निभाउंदियां होईयां फुल्लां बख्श देणियां जी। आप जी कृपा करो अपने सुखासन स्थाना विखे चल के विराजमान होवो। संगतां नूं खुशियां बख्शो। रात सुख शांति नाल बतीत करनी। अमृत वेले फिर संगतां नूं दर्शन दे दारे बख्शिश करने जी। सही प्यारे मिलने जिना मिलिया तेरा नाम जित्या वे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਾਰਨ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 623 ਔਰ 624 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਲੋਕ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਜੁਗਾਦਿਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨਮੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੀ ਮਿਟਾਵੋ, ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸੰਬਰ ਏਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਾਖਿਅਰ, ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਏਕੋ ਆਖਿਅਰ, ਕਿਨ ਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵੈ। ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰੋ। ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਬ ਨਾ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰਹਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਟਰੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਬੇਗਨ ਨ ਲਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿਦ ਸਿਧ ਨਉ ਨਿਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੋ ਫਲ ਫਲਾ, ਸੇ ਸਿਮਰਹਿ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਸ਼ ਸੂਜੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੌ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਤਨਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੌ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੌ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੌ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੌ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਬੇਮੁਹਤਾਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੌ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੌ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੌ ਸਿਮਰਹਿ ਸਦਾ ਅਬੇਨਾਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਜਾਨਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ।
प्रभ को सिमरह से पर उपकारी, प्रभ को सिमरह तिन सद बलहारी, प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह तिन सुख बेहावे, प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरह तिन आनंद कनेरे, प्रभ को सिमरह बसे हर नेरे, संत कृपा ते आन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभ कै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभ कै सिमरन कबहु न चूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी, प्रभ कै सिमरन निहचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभ कै सिमरन अनहद झुन कार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरह से जान जिन को प्रभ माया, नानक तीन जान सरणी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए, हर सिमरन भय सिद जति दाते, हर सिमरन नीच चहो कुंठ जाते, हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकार, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, सलोक दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ, शरण कुमारी आयो, नानक के प्रभ साथ, अष्टपदी जह मात पिता सोत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाय, जय महाप्यान दूत जमदल है, तह केवल नाम संग तेरा चल, जह मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तरह, हर को नाम कोट पाप पर हरै, गुरमुख नाम जपहो मन मेरे, नानक पावह सुख कनेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया, लाख करोरी बंधन पर है, हर का नाम जपत निस्तर है, अनेक माया रंग तिख ना बुझावै, हर का नाम जपत आघावै, जिह मार्ग एहो जात अकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है, छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तह पार पराही, अनक बिघन जय आय संघर है, हर का नाम तत्काल उधार है, अनेक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावे बिसराम, हौ मैला मल कबहु न धोवै, हर का नाम कोट पाप खोवै, ऐसा नाम जप हो मन रंग, नानक पाईए साधक ऐ संग, जिह मार्ग के गने जाहि न कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा, जिह पैंडै महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहा पंथ तेरा को न सियानु, हर का नाम तह नाल पछानु, जह महाभयान तपत बह काम, तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम, जहां त्रिखा मन तुझ अकरख है, तह नानक हर हर अमृत बरख है, भगत जना की बरतन नाम, संत जना कै मन बिश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उधरे जन कोट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात, हर जन कै हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान, मन तन रंग रते रंग एक, नानक जन कै बिरत बबेक, हर का नाम जन कौ मुकत जुगत, हर कै नाम जन कौ त्रिपत भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परै न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन सुभा पाई, हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा, हर हर जन कै माल खजीना, हर धन जन कौ आप प्रभ दीना, हर हर जन कै ओट सपाणी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रास माते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुकत बहु करे, नानक जन संग केते तरे, पार जात एहो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम त्याई है, नाम तुल कश अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए, सलोक
बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टंडोल पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमूल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खाट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया सकल त्याग बन मध्य फिरिया अनेक प्रकार किए बहु जतना पूर्ण दान होमे बहु रत्ना शरीर कटाए होमय कर राति वरत निम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुर मुख नाम जपिए एक बार नौ खंड प्रथमी फिर चेर जीव महा उदास तपि सरथी वै अग्न माहे होमत प्राण कनक अशब है वर भूम दान नेवली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावे तौ पी होमे मैल न जावे हर के नाम समसर कश नाहे नानक गुर मुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीरथ देह छुटै गर्भ गुमान ना मन ते हुटै सोच करै दिन स अर रात मन की मैल ना तन ते जात इस देही कौ बहु साधना करै मन ते कबहु न बिखिया टरै जल धोवै बहु देह अनीत सुध कहाँ होय काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहुमूच बहुत स्याण पजमका पौ व्यापै अनेक जतन कर त्रिशन ना त्रापै भेख अनेक अग्न नहीं बुझै कोट उपाव दरगह नहीं सिजै छूट सनाही ऊब पयाल मोहे व्यापै माया जाल अवर करतूत सगली जम डानै गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोलै सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगै साध जना की सेवा लागै जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सद गावै जे को अपने सो बालूरै साध संग ए होमै शोरै जे को जानम मरण ते डरै साध जना की सरणी परै जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान आपस कौ जो जाने नीचा सो गनिय सब ते ऊचा जाका मन होए सगल किरीना हर हर नाम तिन घट घट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेख सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन सम दृष्टिता नानक पाप पुन नहीं लेपा निरतन को धन तेरू नाउ निथावे कौ नाउ तेरा थाउ निमाने कौ प्रभ तेरु मान सगल घटा कौ देवा दान करण करावन हार स्वामी सगल घटा के अंतर जामी अपने गात मित जानो आपे अपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुमते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल किरिया मैं उत्तम किरिया साध संग दुरमत मल हिरिया सगल उद्दम मैं उद्दम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओह उत्तम थान नानक जिह घट वसै हर नाम सलोक निर्गुण यार ए अन्या सो प्रभ सदा संभाल जिन किया ते सचीत रख नानक निबहि नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार सिगारिया गर्भ अगन मैं जिने उबारिया बार बविस था तुझै प्यारे दूध पर जोवन भोजन सुख सूद बिरद भया ऊपर साख सैन मुख अप्याओ बैठ कौ दैन इहु निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श लेहो तौ नानक सीजै जिह प्रसाद धर ऊपर सुख बसै सोत प्रात मीत बंता संग हसै जिह प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला जिह प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना तिसै त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंध ब्यापे नानक काड लिहु प्रभ आपे आद अंत जो रख नहार तिस स्यों प्रीत न करै गवार जाकी सेवा नव नेद पावै ता स्यों मूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर साध सदा हजूरे ताको अंदा जानत दूरे जाकी टहल पावै दरगै मान तिसै बिसारै मुगद अजान सदा सदा ए भूलन हार नानक रख नहार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै साच छोट झूठ संग मचै जो छडना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर तहब प्रीत भस्म संग होए
अंधकूप मैं पतत बिकराल, नानक काढ लेहु प्रभ दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर भेख अंतर मल माया, शपश नाहे कश करे छपाया। बाहर ज्ञान ध्यान इसनान, अंतर व्यापै लोभ सुवान। अंतर अगन बाहर तन सुआ, गल पाथर कैसे तरह अथा। जाकै अंतर बसै प्रभ आप, नानक ते जन सहज समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावै, कर गहै लेहो ओढ़ निभावै। कहा बुझारत बूझै डोरा, निस कहियै तौ समझै पूरा। कहा बिसन पद गावै गुंग, जतन करै तौ पी सुर भंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत ऊहां उस गवन। करतार करुणा मैं दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा करै। संग सहाई सो आवै न चीत, जो बैराई तास्यों प्रीत। बलुआ के ग्रह पीतर बसै, आनंद केल माया रंग रसै। दृढ़ कर मन मन प्रतीत, काल न आवै मूढ़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बिकार महा लोभ त्रोह। याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले हो आपन कर कर्म। तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक, तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊचे ते ऊचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जाने, नानक दा सदा कुर्बानी। श्लोक दीन हार प्रभ छोड़ कै, लागै आन सुआए। नानक कहु न सी जई, बिन नावै पत जाए। अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै, एक वस्त कारण बिखोट गवावै। एक पी न दे दस पी हर ले, तौ मूड़ा कहो कहा करे। जिस ठाकुर सिउ नाही चारा, ताको कीजै सद नमस्कारा। जाकै मन लागा प्रभ मीठा, सर्ब सुख ताहु मन बूठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्ब थोक नानक तिन पाया। अगनत साहु अपनी दे रास, खात पीत बरतै आनंद उलास। अपनी अमान कश बहुर साहु ले, अज्ञानी मन रूस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवै, बहुरुस का विश्वास न होवै। जिस की बस्त तिस आगै राखै, प्रभ की आज्ञा मानै माथै। उस दे चौगुन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनेक भांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत। बिरख की छाया स्यों रंग लावै, ऊ बिन सह ऊ मन पशुतावै। जो दिसै सो चलनहार, लपत रहे ओ तह अंध अंधार। बटाऊ स्यों जो लावै नेह, ताको हाथ न आवै के। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाई। मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया, मिथ्या होमै ममता माया। मिथ्या राज जोगन धन माल, मिथ्या काम क्रोध बिकराल। मिथ्या रथ हस्ती असब बस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता। मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस्थिर भगत साध की सरन, नानक जप जप जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै, मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरै। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार को तावै, मिथ्या मन पर लोभ लुभावै। मिथ्या तान नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बिकारा। बिन बूझे मिथ्या सब भय, सफल देह नानक हर हर नाम लय। बिरथी साकत की आर जा, साच बिना कह होवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताकै दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बेहाय, मेघ बिना ज्यों कीती जाए। गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों किरपन के नरारथ दाम। धन धन ते जन जिहे घट बस्यो हर नाउ, नानक ताकै बल बल जाओ। रहत अवर काश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुख हूँ गंड लावत। जानन हार प्रभु प्रवीन, बाहर भेख न काहू पीन। अवर उपदेसै आप न करै, आवत जावत जन मैं मरै। जिसकै अंतर बसै निरंकार, तिस की सीख तरै संसार। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक ऊन जान चरण पराता।
करो बेनती पार ब्रह्म सब जन अपना किया आप ही मन आप ही आप करत नबेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा उपाव सियानप सगलते रहत सब काछ जाने आत्म की रहत जिस भावै तिस लय लड़ लाए थान तनंतर रहया समाए सो सेवक जिस कृपा करी नेमख नेमख जाप नानक हरि सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहं मेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद शति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लावै तिस को सिमरत परम गत पावै जेहे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर जेहे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहु तिस रसना जेहे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याइए त्यावन जोग जेहे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे त्याग कत अवर लुभावै जेहे प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय जेहे प्रसाद तुझ सब को मन मुख ताकू जस रसन बखानै जेहे प्रसाद तेरु रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पावै नानक पात सेती घर जावै जेहे प्रसाद आरोग कंचन देही लिवलावो तिस राम स्नेही जेहे प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जेहे प्रसाद तेरे सगल शिदर ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै जेहे प्रसाद तुझ को ना पहुचै मन सास सास सिमरहो प्रभ ऊचे जेहे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे हे जेहे प्रसाद आपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जेहे प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ को कबहू ना बिसारी जेहे प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ आपू ने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसै त्याई तिसहै त्याए जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रखै जेहे प्रसाद करहै पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जेहे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ कौ सास सास चितारी जेहे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरौ सदा अनूप जेहे प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जेहे प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कहै जेहे प्रसाद सुनै करण नाद जेहे प्रसाद पेखै बिस्माद जेहे प्रसाद बोलहै अमृत रसना जेहे प्रसाद सुख सहजे बसना जेहे प्रसाद हस्त कर चला है जेहे प्रसाद संपूर्ण फल है जेहे प्रसाद परम गत पावै जेहे प्रसाद सुख सहज समावै ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लाग हो गुर प्रसाद नानक मन जाग हो जेहे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ कौ मूल न मन हो बिसार जेहे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप जेहे प्रसाद तेरे कार्ज पूरे ते सहे जान मन सदा हजूरे जेहे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू तास्यों राच जेहे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्ब निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु न किन्हू लया जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक इन कह कछु न हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचर्ज कथा अष्टपदी साध कह संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साध कह संग मिटे अभिमान साध कह संग प्रगटे सो ज्ञान साध कह संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होतन बेरा साध कह संग पाए नाम रतन साध कह संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरनै कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी
साध कै संग अगोचर मिले, साध कै संग सदा पर फुलै, साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन, साध कै संग नकत हूं तावै, साध संग आस थे मन पावै, साध कै संग माया ते भिन, साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत, साध संग के सेव नहीं बैर, साध कै संग न भीगा पैर, साध कै संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध कै संग ना ही हों ताप, साध कै संग तजै सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई, साध कै संग न कबहूं तावै, साध कै संग सदा सुख पावै, साध संग बस अगोचरल है, साधु कै संग आजार सहै, साध कै संग बसै थान उचै, साधु कै संग महल पहुचै, साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म, साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान, साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब ने सतारै, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग सोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्ब थान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म, साध कै संग नहीं काश काल, दर्शन भेटत हो तिनिहाल, साध कै संग कलुखत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इहां उहां सोहेला, साध संग बिशरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावै, साध कै संग न बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाउ, साध संग हर के गुण गाओ, साध कै संग न मनते बिसरै, साध संग सर्पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा वेद न जानै, जेता सुनै तेता बख्यान है, साध की उपमा तेहो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊच ते ऊची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई, सलोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेख एकस बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ सोख, ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक कौ लागै तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कै तीरज एक, ज्यों वसुधा को खोदै को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक ज्यों पावक का सहज सुभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल ना लागै जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मान होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन भय नानक जेन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न पाया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पार उपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी कै होय सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार,
ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम प्रवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कै होय अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी कौ बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी कौ खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी कौ सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाय अध्याखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक, उरत हरै जो अंतर नाम, सर्व मैं भेखै भगवान, निमुख निमुख ठाकुर नमस्कारै, नानक ओह अपरस सगल निस्तारै, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन मैं प्रीत निरंजन दर्श, परत्रै रूप न भेखै नेत्र, साधकी टहल संत संग हेत, करन ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिख्या पर हरै, मन की भाषना मन ते टरै, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मधे को ऐसा अपरस, बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिस्न की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हुए निह कर्म, तिस बैष्णु का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा ने बाछै, केवल भगत कीर्तन संग राचै, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावै, नानक ओ बैष्णु परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबुदै, राम नाम आत्म मैं सोदै, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोन न आवै, वेद पुराण सिमरत बूजै मूल, सूखम मैं जानै असथूल, चहुवरना कौ दे उपदेश, नानक उस पंडित कौ सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहुवरना मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिस की गत होए, साध संग पावै जन कोए, कर कृपा अंतर उरत हरै, पाशु प्रेत मुगद पाथर को तारै, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत के तै न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म, जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास, तिस का नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नगरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगै परवान, अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सोजी परै, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं वियोग, तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो व्रताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर राखै तैसा तिन नाओ, आपे करण करावण जोग, प्रभ पावै सोई फुन होग,
पसरियो आप होए आनत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पय निहाल। श्लोक उस्तत करहे अनेक जन, अंत न पारावार। नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी। कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बान भ्रमे उदासी। कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते। कई कोट आत्म ध्यान धारै, कई कोट कब कब विचारै। कई कोट नव तन नाम त्यावै, नानक करते का अंत न पावै। कई कोट पहे अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी। कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपेग आत्म निकोर। कई कोट पर दर्ब कहिरै, कई कोट पर दुख न करै। कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे। जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जानै करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रास भोगी। कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरख निप जाए। कई कोट पवन पाणी बैसंत्र, कई कोट देश भू मंडल। कई कोट ससियर सूर नखियत्र, कई कोट देवदानव इंद्र सिर शत्र। सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस तारै। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास्त। कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत। कई कोट किए चर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे। कई कोट जख्य किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच। सब ते निरह सब हूं ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर। कई कोट पाताल की वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी। कई कोट जन्मै जीवै मरै, कई कोट बहु जूनी फिरै। कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट घालै थक पाहे। कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया मै चिंत। जह जह भाणा तह तह राखे, नानक सब के शिव प्रभ कै हाथे। कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी। कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म में पार ब्रह्म रहंते। कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिन को मिल्यो प्रभ अविनाश। कई कोट मंगै सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिन को हुए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन। कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड। कई कोट होए अवतार, कई जुगत कीनो विस्थार। कई बार पसरियो पसार, सदा सदा एक एक ओंकार। कई कोट कीने बहु भांत, प्रभ ते होए प्रभ माहे समात। ताका अंत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए। कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास। कई

कथना कथी न आवै टूट, काथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देदा दे लै दे तक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाही, हुक्मे हुक्म चलाए राहु, नानक विगसै वे प्रवाहु, साचा साहिब साच नाए, पाख्या पौ अपारु, आख है।

आपे आप निरंजन सोए। जिन सेविया तिन पाया मानु, नानक गाविए गुणी निदान। गाविए सुनिए मन रखिए भाउ, दुख पर हर सुख कर लै जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहा समाई। गुरीसर गुर गोरख बरमा, गुर पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई, तीरथ नावा जे तिस पावा। विण भाणे के नाए करी, जेती सिर ठो पाई वेखा। विण कर्मा के मिले लई, मत विच रतन जवाहर माणिक। जे एक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा, होर दसूनी होए। नवा खंडा विच जानी है, नाल चले सब कोई। चंगा ना और काय कै, जस कीरत जग।

नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोय करे सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै धरत तबल आकाश सुनै दीप लोह पाताल सुनै पोहे न सकै काल नानक भगत।

जुगत तन भेद सुने शास्त्र सिमृत वेद नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नास सुने सत संतोख ज्ञान सुने अठसठ का स्नान सुने पढ़ पढ़ पावह मान सुने लागे सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का ना सुने सरा गुणा के गाह सुने सेख पीर पातशाह सुने

जाने सोई, किव करे आखा किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना। नानक आखण सब को आखे, इक दू इक सियाणा।

कोई त्रिसूचे को जाने सुई जीवड़ आप जाने आप आपू नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाई वड्डा दाता तिल ना तमाई किते मंगह जोद अपार कितिया गणत नहीं विचार किते खप टुटह वेकार किते लै लै मुकर पाहे किते मूर्ख खाही खाहे किते आदुख भूख सद मार ए पे दात तेरी दातार बंद खलासी भाणे हुए हो राख न सकै कोए जे को खाए के आखण पाए ओह जाने जितियां मुह खाए आपे जाने आपे दे आख से भेके के जिसनो बख्शे शिवसा लाहा नानक पातशाही पातशाहू अमुल गुण अमुल वापार अमुल व्यापारी अमुल भंडार अमुल आवह अमुल ले जाहे अमुल पाई अमुला सुमाहे अमुल धर्म अमुल दीवान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुलो मुलाख्या न जाए आख आख रहे लिवलाए आख वेद पाठ पुराण आख पढ़े करह वख्यान आख बरमे आख इंद आख गोपी तै

मरण बहीन, चक्र बकर फिरया चतर चक मानी पुरतीन, लोक चौदह के बिकै जग जापी जह जाप, आद देवनाद मूरत थाप्यो सबै जी था, परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख अपार, सर्व विश्व रच्यो स्वयं भव गणन भंजन हार, कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश, धर्म धाम सो भरम रहत अभूत लख अपेसु, अंग राग न रंग जाकै जात पात न नाम, गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दाय काम, आप रूप अमीक अनुस्त ते पुरख अवतूत, गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत, अंगहीन अभंग नातम एक पुरख अपार, सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार, सर्वगंता सर्वहंता सर्व ते अनपेख, सर्व शास्त्र ना जान नहीं जे रूप रंग रेक, परम वेद पुराण जा कह नित भागत नित, कोट सिमरत प्राण शास्त्र नया वही वह चित, मत पार चंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार, अस न भंग उपमा नंग अनुभव प्रकाश, निश्चिन नाश आजान बाहु साहन साहू, राजान राज पानन पान, देवान देव उपमा महान, इंद्रान इंद्र बालान बाल, रंकान रंक कालान काल, अनभूत अंग अभा अपंग गत मित अपार, गुणगन उदार गुणगन प्रणाम, निर्भय निकाम अद्भुत प्रचंड, मितगत अखंड आलिश्य कर्म आदृश्य धर्म, सर्वा प्रनाढ्य अंडंड बाढ़्य चाचरी छंत्व प्रसाद, गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे, हरियंग करियंग निरनामे अकामे, पुजंग प्रया छंद, चतर चक्र करता चतर चक्र हरता, चतर चक्र दानी चतर चक्र जानी, चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती, चतर चक्र पाले चतर चक्र काले, चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे, चतर चक्र मान्या चतर चक्र दानिया चाचरी छंद, न सत्रै न मित्रै न परमंग न पित्रै न कर्मंग न काये, अजन्मंग अजाये, न चित्रै न मित्रै परे है पवित्रै, प्रतिशय अधिशय अदृश्य अकृशय, भगवती चंद्व प्रसाद कथते, के आ छिज देशै के आ भिज भेसै, के आ गंज करमै के आ भंज भरमै, के आ भिज लोकै के आ दित सोकै, के अवधूत वरणै के विभूत करनै, के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है, के आसुक वर्ण के सर्वा भरने, के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है, के वर्मंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है, के आद अदेव है के आप अपेव है, के चित्रंग बहीन है के कह अधीन है, के रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह, के पाक व्यय वह के गय भूल गय वह के अफूल गुनाह है, के साहन साह है के कारण कुनिंद है, के रोजी देहांद है के राजक रहीम है, के कर्मंग करीम है, के सर्वंग कली है, के सर्वंग दली है, के सर्वत्र मान्य है, के सर्वत्र दान्य है, के सर्वत्र गौण है, के सर्वत्र पौण है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र भेष है, के सर्वत्र राज्य है, के सर्वत्र साज्य है, के सर्वत्र दीन है, के सर्वत्र लीन है, के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र भेष है, के सर्वत्र काल है, के सर्वत्र पाल है, के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय, के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है, के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है, के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है, के सर्वत्र पान्य के सर्वत्र मान्य, के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वं कलिमे के परमं फहीमे, के अकल अलमे के साहिब कलामे, के हुस्नल वजू है तमामुल रुजू है, हमेशल सलामे सली खत्म दामे, गनीमुल सिकस्त है गरीबुल परस्त है, बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है, तमीजुल तमामे रुजुअल निदान है, हरी फुल अजीम मैं रजा की यकीन है, अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है, अजीजुल निवाज है गनी मुल्क राज है, निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुक्त प्रभा है सुजुगत सुदा है, सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है, समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है, समस्त सलाम है सदैव अकाम है,
निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, वो अंगाध रूप है, अनाध स्वरूप है, अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभं सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिपुगत स्वरूप है, अचिज है, अचूत है, किनर्कं परनाश है, पृथ्वल प्रवास है, निरुक्त प्रभा है, सदैवं सदा है, विभुगत स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुगत प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, चाचरी छंद अपांग है, अनंग है, अपेख है, अलेख है, अपर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अपूत है, अतूत है, अनाश है, उदास है, अतंध है, अबंध है, अपगत है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनित है, अलिख

मैं न कहूँ सब तो हे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गहू तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार।

अनहद दूरे, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भर पूरे, पिणवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद दूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

पिता अकाल पुरख वाहिगुरु दसों पातशाह की आत्मक जोत साहिब सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब गरीब नवाज सतगुरु जी आप जी ने अपार रहमत बख्शिश की अमृत वेले दे जागने बख्शे अमृत वेले पावन पवित्र तख्तां ते प्रकाशमान हो करके दर आईया संतां नूं दर्शन दीदार बख्शिश कीते आप जी का कोटान कोट शुकराना सतगुरु जी आप जी की कृपा सदका पावन हजूरी विच दीवान सजे सजे दीवाना अंदर अमृतमय बाणी श्री सुखमनी साहिब जी दे पाठ नित निम बाणिया दे पाठ होए अगाध बोध बाणी पढ़दिया हुईया बेअंत भुलां दी खिमा करनी सिर ते मेर भरिया हथ रख के बाणी शुद्ध ते स्पष्ट पढ़न सुनन विचारन दी दात प्रदान करनी सतगुरु जी अमृत वेले बेअंत संगतां ने आप जी के पावन दर घर दियां हाजरियां भरियां भेटावां अर्पण कीतियां कृपा करो समूह संगत दियां हाजरियां भेटावां दर प्रवान करनियां सबना नूं दरों घरों नामदान गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजना किरत कमाइयां विच वाधे पाउणे घरां परिवारां विच सुख वरताउणी बच्चियां दे सिर ते मेल भरिया हथ रखना गुरसिखी दी दात देश कौम दा प्यार बख्शिश करना बेअंत संगतां वल्लों मीडिये दे माध्यम राहीं हाजरियां भरियां गईयां सेवावां भेजियां गईयां गुरमत अनुसार सभना दियां मनोकामना मनोभावना संपूर्ण करनियां संगतां वल्लों गुरु के लंगरां विच तन मन धन दे नाल सेवावां कीतियां जा रहियां आप जी ने थाएं पाउणियां सभना नूं चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजना सतगुरु जी अपने सेवादार टहलीए सिंघां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना काम क्रोध लो मोहंकार तो बचा करके भावना सहित दर घर दी सेवा दे योग कर लेना हर मैदान फतेह बख्शिश करनी सदा अंग संग वर्तना गरीब नवाज सच्चे पातशाह जियो आप जी के हजूर अरदास बेनती है दर घर दे प्रीतवाना वालों अपने बच्चे काका अनेक सिंह दे जन्म दिहाड़े दी खुशी नूं मुख रखदे हां सतगुरु जियो आप जी के चरण कमलां विखे अरदास बेनती जोधड़ी है गरीब नवाज आप जी ने कृपा करनी काका अनेक सिंह दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना लम्मी आर बला उच्च विद्या दी दात गुरसिक्खी वाला जीवन सच्चा सुच्चा जीवन बख्शिश करके नवाजना परिवार दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना बेअंत माया अरदास भेटा एक खजाने भरपूर करने सभना नूं चढ़दियां कला बख्शिश करके नवाजना गरीब नवाज बख्शिश कीते भंडारियां विचों कड़ा प्रसाद दी देग हाजिर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते कृपा करो पावन पवित्र हुक्म बख्शो जी हुक्म ते चलन दी मत बुद्ध प्रदान करो अगले दीवान सजाउण दी आग्या होवे सेई प्यारे में जिन्ना मिले आप जी का नाम चिते आवै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

नित हृदय रखा संभालू, तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राख।

जू जू फिर बटे ज्ञानी पूछे ताहे सतगुरु संतोखा धर्म गिरथवाओ त्रै तेरे जिते का चोर गिरथवाओ द्वापर तपे का सद

जाए, जम्मण मरना हुक्म है, पाने आवे जाए, खाना पीना पवित्र है, दिपोन रिजिक संवाहे, नानक जिनी गुरु मुख बुझिया, इना सूत नाय पुरी सतगुरु डाकर साला ही है।

तशियर पर न सूज सगल पवन के नायका। एक शिन दर्श दखाए जी मल्लन पाई मत माधवा।

गुरु सवारी संगत जी दूर नेड़े माई पाई सब आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग परम सन्मान योग पतत पावन दया सिंध कृपा निध गुरु गरीब निवाज सच्चे पातशाह दसा पातशाहियां दी जगदी जोत समरथ गुरु जुग हो जुग अटल आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आद गुरु ग्रंथ साहिब जी दी छत्र छाया हेठ हजूरी अंदर सतगुरां दी साजी अते निवाजी होई गुरु सवारी साध संगत जीओ बहुत वड्डियां भागां वाले हो गुरु की अपार अपार कृपा बख्शिश प्राप्त रोजाना करन दा निमाणा जा जतन करदे हो गुरु ने कृपा कीती अमृत वेले तख्तां ते प्रकाशमान हो करके आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने खुले दीदार बख्शिश कीते ने अते बेअंत ही संगतां ने अमृत वेले तो लै करके हुण तक दिन वेले भी कई गुरसिख आउंदे रहिंदे ने गुरु की कृपा गुरु के दीदार गुरु की संगत प्राप्त हुंदी है। जिवें जिवें सतगुरु महाराज सतगुरां की संगत प्राप्त हुंदी है तिवें तिवें आनंद की प्राप्ति हुंदी है। श्री मान भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने एक बड़ा सोहना कवित कलम बंद किया है अमृत वेले दी संभाल गुरु दी कृपा है पंज बाणियां दा नित नेम गुरु दी कृपा जां कई प्यारे गुरसिख होर सुखमणी साहब जी दा नित नेम ए गुरु दी कृपा है। फिर कई ऐसे भी गुरसिख प्यारे ने जिहड़े वाहिगुरु गुरमंत्र जां मूल मंत्र दा अभ्यास करदे ने भाई साहब जी कहिंदे गुरु की अपार कृपा है पर उस वेले सतगुरां दी पूरी पूरी पूरी कृपा समझ लवी जिस वेले संगत विच आउण दा भी नित नेम बन गया एक बहुत भारी नित नेम है। श्री मान भाई गुरदास साहब जी ने कबित बड़ा प्यारा कलम बंद किया है वो कहिंदे साध संग दर्शन को है नित नेम जाको पंज बाणियां दा नित नेम सोधर दा नित नेम सोले जी दा नित नेम बड़ा जरूरी है बहुत जरूरी है पर नाल दी नाल एक हदायत यह कर दिती साध संग दर्शन को है नित नेम जाको सोई दर्शनी सम दर्श ध्यानी है। कहिंदे अगर ध्यान परपक करना है रब दा रूप हो जाना है तक भाई साहब जी कहिंदे फिर संगत करनी बड़ा जरूरी है संगत विच ओ रूहां कई बार सानू मिल जांदियां ने जिहड़ियां बहुत बहुत पहुंच वालियां हुंदियां ने जिहड़े मेरे वाहिगुरु निरंकार नाल एकमिक हो चुके हुंदे ने उहनां दे मिलाप उहनां दे बोल उहनां दे दीदार उहनां दा खाक मेरे निरंकार जी दे घर तक लै जांदा है। साध संग दर्शन को है नित नेम जाको सोई दर्शनी सम दर्श ध्यानी है शब्द बबेक एक टेक जाके मन बसे मान गोर ज्ञान सोई ब्रह्म ज्ञानी है। किसी ने सवाल किया भी संगत की इनी उपमा क्यों है इनी वडियाई क्यों है तो भाई गुरुदास साहब जी ने जवाब दिता संगत विच गुरु का शब्द प्रतख रूप दे विच वरतदा है क्योंकि गुरु का टिकाणा असली घर जिहड़ा साध संगत है निज कर मेरो साध संगत नारद मुन दर्शन साध संगत मेरो निज रूप है। जिहड़े संगत दे गुरुद्वारा साहिब आके दीदार हुंदे ने भाई साहिब जी कहिंदे गुरु कहिंदे मेरे ही दीदार ने निरंकार कहिंदा मेरे ही दर्शन ने होर मैनू कित्थे लभना चाहुणा है तां मैं जरे जरे विच पर संगत विच प्रतख नजर आ जांदा है। शब्द बिवेक एक टेक जाके मन बसे मान गुर ज्ञान सोई ब्रह्म ज्ञानी है। संगत विच शब्द है शब्द तो ज्ञान मिल जाता जदो ज्ञान परपक हो जाता फिर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है फिर ब्रह्म का रूप हो जाता है फिर सारे ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आता है। ब्रह्म दिस ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणी है आत्म पसारा करने हारा प्रभ बिना नहीं जानिए। शब्द बबेक टेक एक जाके मन बसे मान गुर ज्ञान सोई ब्रह्म ज्ञानी है।
दृष्ट दर्श अर शब्द सोरतमिल प्रेमी प्रे प्रेम उन मन उन मानी है। दृष्ट दर्श नेत्रां द्वारे आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे दीदार होए ने, सुरत विच गुरु का शब्द टिक जाता है। दृष्ट दर्श अर शब्द सुरत मिल प्रेमी प्रे प्रेम उन मन उन मानी है। साध संग एक रंग जोई सोई गुरमुख निर्मल निर्बानी है। मन संसार वालों उलट के एक सकेंट भी गुरु नाल टिक गया तां भाई साहिब जी कहिंदे कृपा वरत जांदी है, सारी बंधन जिहड़े ने संगत विच आके टुट जांदे ने। गुरु ऐसी रहमत करदा, फिर इत्थे बेनती हुंदी है अमसर दीन दयाल न तुमसर अब पतियार क्या कीजे। पातशाह साडे वर्गा गरीब कोई नहीं है, तुहाडे वर्गा दयालु तां कृपालू कोई नहीं है। तुसीं बहुत ही प्यार वाले गुरसिख माई भाई जी रोजाना नियम दे नाल सतगुरां दे दरबार दी हाजरी भरदे हो। दूर दरेडे माई भाई गुरसिख घरां विच वी आनंद प्राप्त करदे ने। गुरु के कीर्तनीय सिंह साहिबान जी अमृत बाणी आसा जी की वार दे कीर्तन आप जीआं नूं सरवण करवा गए ने। जिस वेले सतगुरु जी दे प्रकाश होए सन, मुख वाक साहिब जी की प्राप्ति हुई, अमृत बचन आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 623 अते 624 ते सतगुरु जी दा शब्द सोरठ राग विच सानू प्राप्त होया है। पंचम गुरदेव महाराज तरन गगन नवखंड मह जोत सव रूपी रहे उपहर भन मथरा कश भेद नहीं गुर अर्जुन प्रतख हर। मथरा जी कहिंदे कोई फर्क नहीं है, इदा ना समझो। धन गुरु अर्जन देव महाराज निरंकार ने जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद भयो तत स्यो तत मिलायो अंगद कृपा धार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत छत्र गुर राम दियो गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैन मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जुन पिखाओ नैन। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज ने कृपा की है। आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंग ने 623 अते 624 ते सतगुरां दा शब्द सुभाए मन। आओ अज दे अमृत बचना नाल सांझ करिए।

प्रभ अपने का तान, जो तुम करह करावे स्वामी सा मसलत प्रवान। पत परमेश्वर गत नारायण धन गोपाल गुण साखी चरण शरण नानक दास हर हर संति एह बिद जाति। संग मिल गया सहाई है, जिथे जाइए सुखी हां, सुखा कीमत क्या गणी जा सिमरी गोबिंद। सुख ना ही रे हर भगत बिना, भगती तो बिना सुख किथे है, नाम तो बिना सुख किथे है, ना पदार्था विच है ना कुटुंब विच है, सुख केवल नाम दे विच है। सुख ना ही रे हर भगत बिना, जीत जन्म हो रतन अमोलक, साध संगत जप एक खिणा, साध संगत जप एक खिणा। सुत संपत बनिता विनोद, सुत पुत्र संपता विनोद हाव भाव घरवाली, घरवाले दे छोड़ गए बहुत लोग भोग, बड़े बड़े छड़ गए ने, अज उन्हां दा कोई ना चेते नहीं करता, बड़े बड़े छड़ गए ने जी, असीं आ कौतक खेडे ने आ कुछ कीता, अज तक कोई याद ही नहीं करता। सुत किन्ना क चिर पुत्र याद करेगा, 10 दिन याद कर लेगा, महीना याद कर लेगा, बस कित्थे कि दिन याद है। सुत संत संपत विनोद छोड़ गए बहुत लोग भोग, हैवर गैवर हाथी घोड़े, हैवर गैवर राज रंग, त्याग चल है मूड नंग। नंग किनू कहिंदे ने, जिहदे कोल दबड़ा ना होवे उहनू कहिंदे आ नंग बंदा तुरिया फिरदा, मर कहिंदे नाम तो बिना इदां दा है। मूड नंग चोवा चंदन देह फूलिया, सो तन तर संग रूलिया, मोह मोहया जाने दूर है, कहो नानक सदा हदूर है। मोह विच मोहया होया कहिंदा रब दूर है, पर महाराज कहिंदे ने रब तेरे नेड़े है, वह दूर नहीं है। अंग संग उहनू वेख दुकालंग प्रनासी, दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगम बेपूते। गुरु ने इना अंग संग जान गुरु तेनू छडावेगा। सो सतगुर प्यारा मेरा नाल है, जिथे किथे मैनू लय छडाई। गरीब नवाज कृपा करदे ने कार कृपा, हे गुरु जी कृपा करो प्रभ मेले, सतगुरु जी प्रभु नाल मिलाप करवा दियो। हुण मिलाप दा साधन दसदे ने की है, अगले रहाउ दे बोल ने, जे तू मिलना चाहुंदा है तो फिर की कर। हर गुण गावो सदा सुपाई, फिर सदा उहदे गुणां नूं गा, सदा उहदी वडियाई कर, सदा उहदे नाम नूं जप। उहदे गुण की है, उहदे नाम नूं जपना, बाणी नूं जपना, संगत करनी, यही उहदे गुण ने। अगर जे तू मिलना चाहुंदा है तो जवाब आया है, हर गुण गाओ, हरि परमात्मा की वडियाई उहदे गुणां नूं गा। अंदर सोची जा तेरे कौन कौन गुण, कह कह गावा, आ गुण छड्डा अगला आरंभ है, वो छड्डा अगला आरंभ है, गुणा दा अंत ही कोई नहीं आता, मैं केड़ा केड़ा करा, बस इहदे विच ही मस्त हो जा, यही तेनू मिला देवेगा। किधरे गुरु नानक दीआं साखियां तेरी सुरत विच चल पैण, तुहानू गुरु नानक महाराज कित्थे कित्थे जांदे ने, इह तेरे अंदर चलदी रहे सुरत, कौडे दा किवें पार उतारा होया, संगला दीप जाके राजे शिव नव का किवें पार उतारा होया, सौ सुहागण का किवें पार उतारा होया, सज्जन ठग का किवें पार उतारा होया, यह सुरत विच तेरे चलदी रहे, यही उहदे गुण ने। कलगियां वाले पातशाह जी किवें माछीवाड़े पहुंचते ने, तेरे सुरत विच चलदी रहे, गुरु तेरी वड्डी वडियाई है। तो महाराज कहिंदे ने जदों तू गावेगा उहदे नाल मिल जावेगा, उहदा रूप ही हो जावेगा। मन चंदे अगे स्पष्ट हो जाणा है, मन चंदे मन दीआं इच्छा पूरियां हो जाणगीआं, सब कुछ गुरु दे देवेगा, सगले फल पावो, सारे फल मिल जाएंगे। तो महाराज कहिंदे जी कै संग सहाई, फिर तेनू गुरु प्रतख रूप विच अंग संग नजर आवेगा। रहाओ नारायण प्राण अधारा, अगर तेरे अंदर प्राण चल रहे ना, प्राण तेरे नहीं है, प्राणा नू आसरा गुरु ने दिता होया है। प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारा है, प्रभ जी प्रभ जी प्रभ जी तू मेरा प्राण आधार है, नमस्कार डंडौत बंदना अनक बार जाओ बार। नारायण ओ प्राणा का आसरा है, जो अपनी चेतन सत्ता खिंच लैंदा है, शरीर ढहके ढेरी हो जाता है, कहिंदे जी डेड बॉडी हो गई है, उन्हें आसरा अपना कढ लिया है, पवन चले गई है, पवन विच पवन मिल गई है, पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत तरल जाया, माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कौन टे, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बिचारा, ए तो चलत भया राग्य ने शब्द पढ़ी देना है, कित्थे पहुंच गया है। नारायण ओही तेरे प्राणा दा आसरा, उन्हूं याद रख, पवन द्वारे ही प्राण जड़े ने वो चल रहे ने। हम संत जनारे नारा, ते जेड़े रब दे प्यारे

0: सरस पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे वाहिगुरु जी का खालसा जी वाहिगुरु जी की फतेह।
1: तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तुम मात पिता हम बारक तुमरी कृपा मैं सूहा

जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा तार, जित दुआरे उबरे तित लेहु उबार, सतगुर सुख।

विछुड़ै गुर कै हित प्यार फिर सालाही अपना गुर कै शब्द विचार मिल प्रीतम सुख पाया शोभावंती नार मन मुख मन न भिजई अत मैले चित कठोर सप्पै दुध पियाई है अंदर विस निको।

काल। मन का तुसा हर नाम है, हिरदय रखो संभाल। एहो खर्च अखुट है, गुरमुख निब है नाल। ए मन मूल हो भुलिया, जस है पत गवाए। एहो जगत मोहे दूजै व्यापिया, गुरमति सच त्याए। हर की कीमत ना पवै, हर जस लिखण ना जाए। गुर कै शब्द मन तन रपै, हर स्यों

तित घट प्रगट होए। सब अंतर जामी ब्रह्म है, ब्रह्म वसै सब थाए। मंदा किसनो आखी, शब्द वेखो लिवलाए। बुरा भला तिचर आखदा, जिचर है दुह माहे। गुरमुख एको बुझया, एक समाहे समाए। सेवा सा प्रभ भाव सी, जो प्रभ पाए थाए। जन नानक हर आराध्या, गुर चरणी चित लाए। राग सूही अष्टपदिया, महला चौथा घर दूजा।

जो तुद सेव है सो तू है हुवै, तुद सेवक पैज रखाई भंडार भरे भगती हर तेरे, जिस पावै तिस देवाई जिस तू देहे सोई जन पाए। और

रैन दिन सुगुर चरण आराधी, दया करहो मेरे साई। नानक काजियो पिंड गुरु है, गुरमिल तृप्त अगाही। नानक का

मन है व्यापत अनिक तरंगा, मेरे मन अगम अगोचर, कत पाइए पूरन परमेसर रहाओ, बोह मगन मह रहा व्यापे, अत तृष्णा कबहू नहीं त्रापे, बसै क्रोध शरीर चंडारा, अज्ञान न सूझै महागुबारा, प्रमत व्यापत जरे किवारा, जान न पाइए प्रभ दरबारा, आसा अंदेशा बंद पुराना, मेहर न पावे फिरत बेगाना, सगल ब्याद कै वस कर दीना, फिरत प्यास ज्यों जल बिन मीना, कछु सियानप उकत न मोरी, एक आस ठाकुर प्रभ तोरी, करूं बेनंती संतन पासे, मेल लहू नानक अरदासे।

मन बच क्रम प्रभ एक त्याए सर्व फला सेई जन पा सर्व फला सोई जन पाए तार अनुग्रहो अपना प्रभ कीना केवल नाम भगत रस दीना आद मद अंत प्रभ सोई नानक तिस बिन अवर न कोई।

आया चलन हुक्म संजोग जियो हुक्मे पर पंच पसरिया हुक्म करे रस भोग जियो जिसनों करता विसरै

अंक समाय। राग सूही महला पहला, छंत घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हम कर साचन आए, साचे मेल मिलाए, सहज मिलाए हर मन पाए, पंच मिले सुख पाया। साई वस्तु प्राप्त हुई जिसे ती मन लाया, अन दिन मेल भया मन मानिया, घर मंदिर सुहाय। पंच सब तुन

गुण संग्रहंसी खरी सरसी जारावी रंग राते अवगुण मार गुणी कर छाया पूरे पुरख विधाते तस्कर मार वसी पंचायन अदल करे विचारे नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे वर पायड़ा बालड़िए वर पायड़ा बालड़िए आसा मनसा पूरी राम फिर रावेड़ी सबदरली रव रहया नह दूरी राम प्रभ दूर ना होई घट घट सोई तिसकी नार सुबाई आपे रसी आया पे रावे ज्यों तिस दी वड्याई अमर अडोल।

गुरपुर है कृपा धारी पर पूरी लोच हमारी बड़े खुशियां भरे मौके से आके धन धन साहब गुरु ग्रंथ साहब जी पावन पवित्र सलाही दरबार हाजरी भरी परम सत्कार जो सत्संग जी हो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की पार बख्शिश हुई है कि आप काका तरनप्रीत सिंह बग्गा ते बेटी प्रभजोत कौर विरक से आनंद कार्ज शुरू करन जा रहे हैं थोड़े मिनटां च ते कुछ एक बेनतियां कर लवां पहला एक ते सब ने अपना सिर टक के रखना जी कृपा करके पूरा अद्धा नहीं वन थर्ड नहीं वन फोर्थ नहीं पूरा दूजा आपां कलैप नहीं करनी ताड़ियां नहीं मारनियां हुंदियां गुरु घर दे अंदर मैं इस करके कहना हुंदा कई बार नॉन पंजाबी स्पीकर आए हुंदे उन्हां नूं पता नहीं हुंदा ते ओह ताड़ियां मारन लग पैंदे फिर चंगा नहीं लगदा ओह बेअदबी हो जांदी है फिर सो दो गल्लां मैं जरूर आप नूं कहण सी तीजा बच्चियां नूं संभाल के रखण दी कृपा करनी ताकि एकाग्रता बन सके क्यों गुरबाणी है गुरु का आदब करना साडा सारयां दा फर्ज बनता है इस करके तुसी जानदे हो पर मेरी आदत है कि मैं वो जरूर चेता करा देव सो इत्थे दस दें काका तनप्रीत सिंह बग्गा जो है सपुत्र सरदार इंद्रपाल सिंह बग्गा जी का ते बीबी परविंदर कौर बग्गा जी का बेटी प्रभजोत कौर विरक सपुत्री है सरदार दविंदर सिंह विरक ते बीबी हरप्रीत कौर विरक जी की आई लाइक कंप्लीट एकाग्रता हाँ जी पूरी इंटरप्शन ना करिए बच्चियां नूं ना कड़ी मोड़ी दसीए कुछिए आपां कन्फ्यूज ना करिए क्योंकि मैं भी डायरेक्शन उन्हां देनी है तुसीं अपनियां दे दित्तियां फिर उन्हां पता लगना नहीं कि की करना धन्नवाद हुण आनंद कार्ज दे कुछ हिस्से ने जोड़ी वास्ते ते बाकी नूं पता ही है

तैंडी बंदस में कोई ना डिठा, तू नानक मन पाणा, ओल कुमाई तिस मित्र विचोले।

0: सत्यकार सचुत सत्यपसार
1: नानक सोजन सत माता
0: रूप नारेक नाम के
1: अपने दिल अपने दाना गाय गंभीर की एक जाना
0: हर राम परमेश्वर भविंद्र के पाल नाम जा प्रसन्न
1: हर तेरे की चरणी पाओ नानक कर्म एवं राहो
0: सा पूर्ण सम्मान योग जो कृपाया सोई
1: होगा हर जाता नित्र हो किसका मतलब जाना होगा
0: अनंत रूप में संध्या कह सर तो सुनिए कथा कह
1: राम में राज योग में देवी सब में किसी ग्रह में तो की
0: जाए जाए भक्त सुख पाया
1: लीला की सुनाए चलो देव आरे उगारे
0: गजन की जाना छूट सब करो अपने सूत
1: आपके ज्ञान से आन जन दे या दास नाम की आवत
0: गुरमाई जा को फरमाए जन्म रख
1: जाए प्राण ज्यादा जनावा कैसा नान की जान
0: नाना रूप नाना जाके रंग नाना बेच रहे करंग
1: नाना बेटी में बचार सब नसी एक संसार
0: नाना जब करे जन्माए पूरे हो पूर्ण संसाए
1: नाना बेटा भक्त बनाई उसमें जगत
0: अपनी कीमत आपे पाई सब का किसके सब किसके खाओ जब जब जीवन नान कर खाओ
1: नाम की सारे नाम के तारे कहे जैसे नाम के तारे खंड ब्रह्मांड
0: नाम के तारे सुनते पुराण नाम के तारे सुन ज्ञान ज्ञान
1: नाम के तारे आगात पताल नाम के तारे सगलाकार
0: नाम के तारे प्रिया सर पवन नाम के समुद्र संश्रवन
1: हर कुछ पर जिसे अपना नाम लाए नानक चौथे पद में सोचन लग पाए
0: रूप सत जा का सत्य स्थान पुरुष सत केवल प्रधान
1: सूत सत सर जाकी बाणी सत पुरुष सब माहे से मानी
0: सत कर्म जाके सात सत
1: सत कर्मी निर्मल निर्मली जिसे भी जाए किसे सत करी
0: सत नाम का विश्वास
1: सत नानक होते पारी सत बचे सत देश सत जन जाता इधर कर देश
0: सत नृत्य मुझे जे को नाम जब पता की गत हुए
1: आप सत किया सत सत आपके जाना अपने में गाते
0: इस विश्व स्तर में आ